विशेष आदि खोला खबर को साथ में हिमाल सुन चाँदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुन चाँदी पसल वालिंग बजार सेंचा।

0: सामने जाकर और नहीं तो सात से एक से पाँच थोपलो चार मेरा हाउस को रेडियो आदि खोले रसोई क्या हो।
1: नमस्कार म देवीराम पराजुली जिरेको छनीको भोक लाग्यो। तपाई यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदि खोला एफएम 105.4।

0: बस नहीं आइए हम लोग एक बजे
1: ए समय को साथ में जेतु सुनसादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच गरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: ठुलो हुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस्।

नमस्कार नमस्कार नमस्कार अभी हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हूँ सात मास सांगीतिक अभिवादन देखो कार्यक्रम का विशेष आभार काको इस सुंदर चौधारी दिवाकालीन समय कार्यक्रम का विशेष आभार काको पर्खाई में प्रतीक्षा में रहने भैया तमाम तमाम लोकगीत पारखी संगे रेडियो पारखी मन को पर्खाई को घड़ी मिटाने का लगी सदैक अवसर में जस्ते आज अपनी घड़ी ने दिवसों को एक बजाई सकते यहां रेडियो सेट समक्ष प्रस्तुत भई सके आरती कार्यक्रम गांधीका भाका यहां सांग जिला को पहला आवाज सामुदायिक रेडियो आदिखोला एफएम 105.4 मेगाहर्ज इंटरनेट अनलाइन मार्फत www.radioadikhola.org बाट लगन गरी अनलाइन मार्फत साथ यहां हामीलाई हाम्रो पात्रै बाट पनि एकै साथ सुन्दै आइरहनु भएको छ। दिवाकालीन समय में प्रस्तुत होने कार्यक्रम का विशिष्ट भाका साता को छ दिन अर्थात शनिवार बाहेक अन्य दिन फिन्नबार फिन्न बसाई को साथ में विभिन्न विशुद्ध नेपाली लोकगीत भाका लिएर कार्यक्रम में प्रस्तुत होने गर्द आज हमी कार्यक्रम का विशिष्ट भाका को दोस्रो श्रृंखला सोमवार श्रृंखला के सुन्दर बसाई में रही समक्ष पुराना पुराना लोकगीत भाका जन धेरे पहले बजार में उपलब्ध भैया थे अत्यन्त चर्चा कमा सफल यहां के मन मस्तिष्क में बास बस्न सफल लोकगीत भाका कार्यक्रम में जोड़ने अब खाने कतिपय ढिला नगरिकन कार्यक्रम को शुभारंभ में दैलो घर सुमधुर खाल भाका सोही भाका संगे पुनः पास होने नहीं हमी संगे रहन्हला।

पहाड़ हिमाल भरी सेती काली तारी सातौ चंडी गरम आलम परिक्रमा करी संस्कृति को जागरण कृषि व्यापार शिक्षा सबै तीर छाई रहोस्।